इत्यादि मसाला सर्व चीज राख्यो ततिर मतिर कठिन पर सौटा फुफुच्यो काकारीका झ्यालामा बसी मुरली झोरा नमालाई पहाड नमालाई मधेस लागुरी भी